0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मैं चल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को बस शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राण।

रेडियो वेस भी इसकी जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियो का नाम हरि हरन के आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। अभी अभी कुछ सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार किया है गुड मॉर्निंग कहने के लिए, खुद मोर्ख कहने के लिए। आप सभी सुनने वालों को भी, सभी जो तार किया है आप सभी को भी अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है भजन यात्रा प्रोग्राम, जरूर सुनते ही रहना जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन विक्रम हसरा की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

कार्यक्रम हसरा के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है गोपाल जी की आवाज में, ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले अब की बार राकेश काला जी की आवाज में मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं जो काफी दिनों के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

अब जो मिला है कभी नहीं मिलेगा। सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये खास सुंदर भजन की ओर पैमला जैन की आवाज में आप सुनते ही रहना।

बस पेश की गई है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम भजन यात्रा को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन अरोड़ा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा शिव जी का आरती भजन आप सुनते ही रहना।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन बलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0362 65 65 60। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में

0: प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

कुमार एम जोनिता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुना। चलिए फिल्म बार बार देखो, अरबान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में, सौ आसमान गाना कबूल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अतीफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

ये महीना जो है एक अच्छी महीना हो, सभी को ये महीना जो है बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार रबीन। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम है। आज का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस सुनते हैं। काफी सुनने वालों होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पर है, काम पर है और हमारा प्रोग्राम जो है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ भी सुनते हैं, स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, ऐप भी कर रहे हैं रेडियो SBS का ऐप।

0: Kurani Nagme Kiyor. Ik ben Kurani Filmi. संगीतों का प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय और खास तौर पर आपके लिए आप जो हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा भी प्यार कर रहे हैं, तो आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
0: तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय की ओर, जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
2: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
0: तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भरोसा फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और गाना का बोल है इस भरी दुनिया में। लोग 30 2266 66 11 स्टूडियो का टारगेट।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए भरोसा फिल्म का गीत भी आपने सुना 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और इसी तार के नंबर पर हमेशा रेडियो

एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा और वो भी माइटी मुकेश की आवाज में है। माइटी मुकेश की आवाज में गाना प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। देहात शहर की रहने वाली, देहात शहर की रहने वाली कमला, कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की सर ये माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सिंध वालों की सेवा में। और खास तौर पर आज के प्रोग्राम में ये खूबसूरत गाना माइटी मुकेश की आवाज में मांग करने वाली थी देनहाग शहर की रहने वाली कमला कमला ने तार किया और ये खास गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। बहुत से सुन वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, जरूर प्रोग्राम को सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में होगा पुरानी फिल्म का गीत जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम प्यार का सागर 1961 का फिल्म 1961 का फिल्म। लिम्बर्ग से इरेना ने तार किया है प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और खबर किया है गूगल स्पॉटिफाई के जरिए अपना गूगल स्पॉटिफाई अब्डोमेन के जरिए हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। और एक खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है फिल्म प्यार का सागर मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले लिम्बर्ग की रहने वाली इरेना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, प्यार का सागर। उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लिम्बर्ग से इरेना ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आप गिटार के लिए शुक्रिया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुन वालों स्टूडियो के अंदर काफी तार आते रहते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी तार कर रहे हैं, ऐप कर रहे हैं। चले प्रोग्राम में द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड शहर का रहने वाला किशोर माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना बस मांग किया है आज के प्रोग्राम में। चले मिलकर

तारीख मई को सुमन कल्याणपुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और खासतौर पर इंडिया भारत देश में अनुरेश हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं और इंडिया भारत देश नोएडा से हमेशा हमें हर एक इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, इन्फो देते रहते हैं, किसका मृत्यु हुआ है, किसका वफात हुआ है, कौन सा गाने वाली की वफात मृत्यु हुआ है, कौन सा बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का मृत्यु हुआ है, तमाम इंफॉर्मेशन इन्फो हमें देते रहते हैं इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है अनुरेश को कि हमेशा इंफॉर्मेशन इन्फो देते रहते हैं। तो हमें भी खबर किया है कि कल जब भी 31 तारीख मई था तो कल 31 तारीख मई को सुमन कल्याणपुर इस दुनिया को छोड़कर

कपूर की याद में एक गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, जो पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर की याद में सभी सुनने वालों के लिए।

Suman Kalyanpur, Suman Kalyanpur, ki avans me ye ganabas program me pis ki gay Noor Mehal film karam, usi film ka gana chi program me. Suman Kalyanpur ki yaad me, gana ko mang karne wala tha. India Bharat Desh Noida ka rehne wala, khas to par अनुरेश अनुरेश ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में ये बस पेश की गई है। इस तरह से अनुरेश हम सभी को खबर किया है कि कल 31 तारीख मई 2026 में इसी साल में कल सुमन कल्याणपुर हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, तो उनकी याद में ये खास गाना बस प्रोग्राम में अनुरेश ने मांग किया। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अगली बार प्रोग्राम में पेश होगा और गाना को मांग करने वाली है उत्तर शहर की रहने वाली शिवली, खास गाना मांग किया। और वो भी सुमन कल्याणपुर और मनहर की आवाज में, सुमन कल्याणपुर और मनहर की आवाज में। और एक खास स्पेशल गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, आई द फिल्म चोरी चोरी।

की आवाज में ये गाना पेश की गई चोरी चोरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उत्तरा शहर की रहने वाली शिरली ये खास गाना आज की प्रोग्राम में स्पेशल मांग किया और इसी तरह से ये गाना भी सुमन कल्याणपुर की याद में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं रोटरडम शहर की ओर। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला एक खास गाना बस मांग किया है लता जी की आवाज में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। नागिन फिल्म का नाम है, उसी फिल्म का ये गाना बस सुनते ही रहना। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना, काफी पुरानी फिल्म है, नागिन फिल्म का नाम, लता जी की आवाज में।

0: समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
1: मेरा दिल ये पुकारे आजा, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई नागिन फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शीला आपके तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 12 मिनट बाकी है सुबह 10 बजने में। मौसम इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कहीं बादल छाया हुआ मौसम होगा, और जहां पर बादल छाया हुआ मौसम होगा वहां पर बारिश भी हो सकता है। हम आपको ले चलेंगे मॉरिशियस की ओर। मॉरिशियस में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं दुष्यंत झिंगरी हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। और एक खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में गाना बस मांग किया है। मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत झिंगरी ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नाम नीति मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और खास तौर पर मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत झिंगरे ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। दुष्यंत आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों आने वाले वीकेंड फ्राइडे 5 जून, सैटरडे 6 जून, शुक्रवार 5 जून और शनिवार 6 जून ऑल टुगेदर फेस्टिवल होने वाले है बारन में, यानी कि मिलन 5 जून, सैटरडे 6 जून, शुक्रवार 5 जून और शनिवार 6 जून ऑल टुगेदर फेस्टिवल होने वाले है बारन में, यानी कि मिलन अनहील

के बारा से लेकर के रोटी रोल और ना जाने क्या कौन कौन सा खाने पीने का सामान यहाँ पर रहेंगे, लेकिन बहुत से क्रांतियां रहेंगे और साथ ही साथ पोडियम भी रहेंगे और तरह तरह की पोडियम प्रोग्राम भी रहेंगे, बहुत से म्यूजिक ग्रुप रहेंगे। लेकिन आपको खबर किया जा रहा है सैटरडे 6 जून शाम में 5 बजे से लेकर के रात्रि में 7 बजे तक 2 घंटा लगातार म्यूजिक फॉर्मेट से एक्सप्रेस यहां पर रहेंगे। मैं लेडी संजना मुका एंड लाकाबोई मिस्टर ब्लैक, तो जरूर आप सभी आइए। ग्रेटस एंट्री ग्रेटस पार्किंग है। ऑल टुगेदर फेस्टिवल स्टिक्टिंग संदेश बारन हर साल की तरह इस साल भी फॉर द 24th कीर ऑर्गेनाइज किया है। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए alltogetherfestival.nl वेबसाइट पर आप जाइए। alltogetherfestival.nl वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। या तो रेडियो SBS का फेसबुक पर आप जाइए और रेडियो SBS का

0: Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Radio SBS wens je een mooie zonnige dag.
3: Dat is wat je programma doet, maar niet weet het hoe je gaat. Radio SBS programma hamisha nieuws ke saath verkeersinformatie bhi aapko diya ja raha hai, khabar kiya ja raha hai kahan kahan par Holland desh ke andar mein traffic hai, file hai, aur uske saath mausmi samachar bhi aapko diya ja raha hai. पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है. आज एक तारीख जून है, यानी कि नए महीना का शुरुआत. सभी को ये नए महीना जो है बधाई हो, मुबारक हो. रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर भी है. इसी तार के नंबर पर आप तार कर सकते हैं गाना मांग करने के लिए. ऐप भी आप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप हमेशा तार भी कर सकते हैं. मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिल्म का नाम उम्मीद देना शहर की अंदर में नौशाद भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में बस सुनना चाहते हैं. उम्मीद फिल्म का नाम.

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म उम्मीद उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। खासतौर पर देहरादून शहर का रहने वाला नौशाद, नौशाद का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुझे इश्क है तुझी से। नौशाद आश्रा उम्मीद है कि गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है सुनते ही रहना। खूबसूरत सुहाना मौसम है और इस मौसम में बहुत से सुनने वालों है जो प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। अब की बार किशोर कुमार की आवाज में एक गाना पेश होगा, आशिक हूँ बहारों का फिल्म का गाना पेश होगा, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। और दीमन शहर का रहने वाला मनोज हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। और एक बड़ी ही खूबसूरत गाना किशोर कुमार की आवाज में बस मांग किया है, आशिक हूँ बहारों का।

कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई किस्मत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और खासतौर पर यूट्रेक्ट शहर की रहने वाली शकीला ढोंडाई की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आश्रो में थे गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो एसबीएस की जरिए जो पेश

शकीला आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसपीएस का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार नीबखाइन शहर का रहने वाला हैंक, नीबखाइन शहर से हैंक ने तार किया है और हैंक एक खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है और फिल्म का नाम आया सावन झूमके। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए, एक प्रोग्राम जो बहुत से सुनने वालों दुनिया के कोने कोने तक

cannabis. Ik ga je ooghaanstopper, nieuwe geentje, hupka, rechne vada. Henk Kagas, mangi hui cannabis programme bies. Ik ga je Henk Kasromite, apna mangi hui gana apne suna, aur behet pasand kia he. Shubh din bies kia ja raha he. Aur Radio SBS ka program zarur sunte hi rehna. Bose suna valo he, jo DAB Plus radio ki zariye hamara program ko sunte he. खास तौर पर मोटरकार में, अपना घरों में, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, जिस तरह से भी प्रोग्राम को सुनते हैं, जरूर सुनते ही रहना। प्रोफेसर सोइटोलांट और हॉलैंडियस के बीच में दूर दूर शहरों तक DAB प्लस द्वारा हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, DAB प्लस रेडियो द्वारा। काफी सुनने वाले होते हैं जो घर के अंदर में DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। चलिए आज के प्रोग्राम में देहरादून शहर की ओर फिर से हम आपको ले चलते हैं और देहरादून शहर के अंदर में विनोद हमारा प्रोग्राम

वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं समय निकालकर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुनने के लिए। उसी सुनने वालों होते हैं जो इस प्रोग्राम को भी इंतजार कर रहे हैं। 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक पुरानी नख़्मे जो पेश किया जा रहा है और विनोद भी खबर किया है जहां पर वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आज की प्रोग्राम में गाना मांग किया है मुकेश और लता जी की आवाज में, मदारी फिल्म का नाम है।

0: उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई मुकेश और लता जी की आवाज में, और खास तौर पर डेनहाग शहर का रहने वाला विनोद का खास मांगी हुई गाना आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में बस पेश की गई है। विनोद आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है। खबर किया है कि आप इस वक्त जहां पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर हमारा प्रोग्राम देहरादून शहर के अंदर में बस सुनते हैं, बस मन लगा कर बस काम करना। आप तो जानते हैं मन लगा कर आप काम करेंगे तो एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। सर ये 10:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम बस पेश किया जा रहा है।
1: दिस इज एडो पीटर्स मेट द हाफपुंटे फ्रॉम द रेडियो न्यूज़ ऑफ रेडियो SBS। In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4.75% bij. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
0: De snelste en goedkoopste manier om reclame te maken is via Radio SBS. Met een minimale budget bereik je direct jouw exacte doelgroep. Bel vandaag nog voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of een app sturen via radiosbs.nl.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A12. Van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Radio SBS. The station with the best music. Best music. Best music.
0: Radio SBS. प्रोग्राम आप सभी सुनवाओं की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अभी एक सुनवालों बस दार किया है कि हम स्टूडियो की ओर आ रहे हैं स्टाफ खाने के लिए।

नई महीना का शुरुआत हो गई है, सभी को ये नए नए महीना जो है लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आम्स्टरडम शहर से महेंद्र ने मांग किया है ये खास गाना किशोर कुमार की आवाज में।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह हु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
2: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
2: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
2: अल्लाह

किशोर कुमार। किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र स्टूडियो की ओर तार किया और ये खूबसूरत गाना किशोर कुमार की आवाज में बस मांग किया। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए बस पेश की गई है। शुभ दिन, बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपके साथ हजारों हजारों सुन वालों रोजाना सुबह की वक्त ये प्रोग्राम को सुनते हैं। लता जी की आवाज में एक गाना पेश होगा फिल्म महाराजा, 1970 का फिल्म, 1977 का फिल्म है। इस वक्त दरहा शहर के अंदर में बाहर सफर कर रहे हैं, चल रहा है। दरहा शहर की रहने वाली सिंथिया इस वक्त भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं बाहर से। सानत लोपन क्या हाथ अनक लोपन और हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और एक गाना मांग किया है लता जी की आवाज में। तो चले सिंथिया की मांगी हुई गाना।

सुकुम गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए आसरो उम्मीद है सिंथिया गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभिंग पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। काफी खूबसूरत गाना सिंथिया ने मांग किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई लता जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी महाराजा उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना।

6211 और इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में, गाना जो मुझे भी काफी पसंद है और आम्स्टरडम शहर से आंद्रे जो हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम सालों से बस सुनते हैं आम्स्टरडम शहर के अंदर में, आज की प्रोग्राम में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है, फिल्म का नाम आमने सामने, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

फिल्म का नाम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रो में थे आंद्रे, अपना मांगी हुई गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो एस बी एस के जरिए जो पेश की गई है। सुनवालू घड़ी की ओर देखा जाए 7 मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में, 7 मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में। एक आखिरी और आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में ले चलते हैं प्रोग्राम में। गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा, बीते हुए दिनों हमने ये गाना प्रोग्राम में भी पेश किए थे, एक सुनने वालों ने मांग किए थे। तो आज के प्रोग्राम में आमस्टरडम शहर की रहने वाली, आमस्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये गाना सुनना चाहते हैं। मुझसे कहा कि बीते हुए सप्ताह की प्रोग्राम में हमने ये गाना सुना रेडियो एसबीएस पर और मुझे काफी पसंद आया, तो आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा, कल मंगलवार है, कल सुबह 9 बजे से जरूर फिर से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुनते ही रहना। अब ऐसे आज दोपहर में 2 बजे से लेकर के और 3 बजे तक भी पुरानी नख में बस पेश किया जाएगी। तो चले मिलकर सुनते हैं आमस्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया की मांगी हुई गाना, फिल्म अभी नीतरी, उसी फिल्म का गाना।

0: Amsterdam, Saudowski, rechne valise, rimati, beaki, mangi, hui, gana, bus program, be, peace, gay, astromite, gana, abni, sunaur, behet, bussen, kia, hem. इसी तरह से आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम भी बस पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तार किया, ऐप किया, रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आने वाले प्रोग्राम में बस इसी तरह से जरूर एक बार फिर से हिस्सा लेते ही रहना। खूबसूरत नख़्मे जो सुनने वालों ने मांग किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी अंदर आया है रेडियो SBS का ऐप के जरिए कि सुनने वालों काफ़ी खूबसूरत नख़्मे आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में मांग किए थे। चले प्रोग्राम में रिक्लाम, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकियस इन्फॉर्मेशन की ओर हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Stichting Sandeers Baren organiseert ook dit jaar het leukste en gezelligste festival voor de 24ste keer. All Together Festival Milan in Pekingtuin Baren. 5 en 6 juni 2026. Vrijdag 5 juni vanaf 5 uur 's middags tot 11:30. Rock and Roll en Caribbean Night. Met als afsluiter de legendarische Molukse band Masada. Zaterdag 6 juni vanaf 12 uur tot 11:30. Jeugdfestival met gratis sminken en knutselen. Kulaskoro, Kasba. En vanaf 5 uur tot 7 uur 's avonds muziekformatie Express. Met Lady Sanjana Muka en Mr. Black, DJ Binso. En we gaan de 24ste All Together Festival afsluiten met Smoorverliefd Doebaar Tribuutband. Volledige programma wordt gehost door Ryan Haripasar. Met heel veel krampjes, eten en drinken. Voor meer info, Facebook All Together Festival Baren of alltogetherbaren.nl. Let op, gratis entree, gratis parkeren.
2: Voel de muziek. Beleef

खबर पेश कर बना है सस्ती दामों में आपकी तमाम खबरें जो है तमाम रिक्लाम जो है रेडियो वेस में इसके जरिए बस पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों बस सुनते हैं। रोजाना हजारों हजारों सुनने वालों बस ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम जो है सालों से बस सुनते हैं। अल मीर दान फिर तक यार ये प्रोग्राम इतने शहर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो अगर आपको खबरें देना है रिक्लाम देना है कोई भी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया है कोई भी शो या अपना बदराइव्स रिक्लाम आप देना चाहेंगे तो जरूर रेडियो एसबीएस से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। सस्ती दामों में आपकी सभी कामों काज बस किया जा रहा है। एम्स्टरडे शहर के अंदर में लीरोय दत्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और लीरोय दत्त एक खास गाना बस सुनना चाहते हैं। कुमार सानू जी की आवाज में अतीश फिल्म का नाम

एंस्कडे शहर का रहने वाला हूँ। लीरोय दत्त ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। कुमार सानू जी के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों, मौसम बाहर का जो है काफी खूबसूरत हसीन मौसम है। सुनने वालों, बस मौसम का मजा लेते हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम को भी सुनते हैं। सभी को वेलकम जहां जहां पर भी आप सभी रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं।

11 बजने में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कुछ खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहेंगे। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-262-6611 इसी तारीख नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं।

भी ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हमेशा और हमेशा गाना ही पड़ेगा। एक गाना फिल्म साउथन, उसी फिल्म का गाना न्यू फ्यूचर में नई आवाज में नई संगीत में

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई जिंदगी प्यार का गीत है उसको हरदम ही गाना पड़ेगा। 11:30, मौसम खूबसूरत है और खूबसूरत नगमे प्यार भरी गाने रेडियो SBS की सर ये बस पेश किया जा रहा है। बस दिल की यही तमन्ना है

मुझे मिल जाए। रेडियो SBS के जरिए कुछ खूबसूरत नगमे आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है। है एक सुनने वालों जो इस वक्त सोफे पर लेटे लेटे हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और गाने जो पेश किया जा रहा है उनको काफी पसंद आते हैं। बस मजा ही मजा लेते ही रहना। ये सब गाने जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया

उज्जवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-25-65-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। अजरो मीठे किए गाना हम सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गई कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। चले अब कई बार फिल्म लावारिस की ओर। एक फिल्म जो 1998

ग्रेट उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से उदित नारायण।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। फिल्म का नाम

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म ऐलान का गीत भी इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना सरोग मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म डॉन दो की ओर एक गाना जो आज की

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई।

आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार की तना श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

देखिए आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था दहलीज, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा देखिए आवाज में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म दारिंदा की ओर, यशुदास और कंचन की आवाज में एक खास गाना आप तक पेश किया जा रहा है। उससे पहले ये छोटा सा डायलॉग।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हों, हजारों साल बीत गए हों। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

कंचन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर और किशोर कुमार की आवाज में अब के बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्म दीदार। दीदार फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

परमेश्वर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब कई बार फिल्म का नाम होगा दीवार। तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं फिल्म दीवार जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352-65-65-66 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। फिल्म दीवार गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

Radio SBS की ये किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश जी की आवाज में और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम पतंग।

ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, एक और बड़ी ही खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद रफी की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूं।

0: प्यार फिर
1: रेडियो वेस में इसकी जरिए परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में जो फिल्म फिर वही दिलाया हूँ उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत महमूद और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

निगम अलका याचिक और कोरस की आवाज़ में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज़ में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

आज रपट जाए तो हमें ना भुलाइयो इस अवध फिल्म नमक हलारन इस गसों दोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh komt Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sepne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara zi baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम, और अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए, और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से? गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

कसम से कसम से सनम प्यार तुमसे, करते थे करते हैं हम, उम्र भर करते रहेंगे। इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। Dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Poudwal. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal. Uit de film Panipat komt Sapna Hai Sach Hai.

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजोहदोर जुबेन नौटियाल, दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेर्दर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम तत लीचे मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे एन खसाओ दूर जुबेन नौटियाल कॉम्प होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अद फिल्म क्यों हो गया ना, एन एत इसका अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैत वारस आर देत। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम एर द फिल्म जवाने जाने मन एंड एर द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है, इस सॉन्ग दोरालका याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कॉम्प्ट बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आरती बर्मन लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वासुदेव लीचे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कॉम्स खजानदार शान एन रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स टू जंगल और गीता दत्त करीब आओ ना।

0: aspettato per me.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना।